0: कि उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतजार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करें।
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
0: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या है।

0: फिर मैं एक दफ़ा फिर से मेरा जुनून ताज़ा हुआ, फिर से मैंने इस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत तरीके से एक्सपोज करना शुरू किया।
1: Find out about Ali's story. Info Migrants, reliable news for migrants, wherever they may be.